0: दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के 702 एपिसोड में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आज हमारे साथ हमेशा की तरह शामिल हो चुके हैं शाहिल शरण जी जो हमारे साथ देंगे पेनलिंग पे और साथ साथ हमारे गेस्ट जो आ चुके हैं आज के लिए जो है धीरू जी धीरेन्द्र जिसे हम ज़्यादा करके धीरू जी के नाम पर जानते हैं और साथ साथ में संजय। और हम आज जो विषय जिसके बारे में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे वही ग्रैंड कीर्तन संध्या, तो उसकी जो पूरी समाचार है आज आपको इस एपिसोड में मिलेंगे। और साथ साथ में हम शिवनील को भी शुक्रिया करेंगे जो समय निकाल के हमारे साथ आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, जो हमारा जो आज वीडियोग्राफी संभालेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम हमेशा की तरह क्या करेंगे कि एक गीत साहिल ने कुछ एक्साइटेड कोई अच्छा कोई गीत हमारे लिए ढूंढा है इसलिए बजाने की कोशिश कर रहा है, तो साहिल आपको हम समय देंगे। तो साहिल इज गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग फॉर अस और उसके बाद में हम अपना जो इंटरव्यू जारी करेंगे। और उससे पहले साहिल, तो आपका जो स्पोर्ट्स की दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप एक्साइटेड हो कुछ शेयर करने के लिए?
1: नहीं अभी नहीं।
0: जी हाँ, तो हमारे जो क्रुसेडर्स डिडंट गो दैट वेल बट
1: बहुत खराब रहा।
0: थोड़ा ज्यादा ही खराब था। एनीवेज थोड़ा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो गया था। वी वर होपिंग बिकॉज हम जब क्रुसेडर्स उतने दूर नॉर्मली पहुंच जाता है देन उसका जो वे बैक मुश्किल होता है। देन वी वर आई मीन इट्स नॉट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग अ विन बट एटलीस्ट वी वर एक्सपेक्टिंग अ मच मच बेटर आउटिंग, यानी कि काफी क्लोज गेम, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने को नहीं मिला। बट द अदर वे अगर देखा जाए तो फीफा वर्ल्ड कप ये चल रहा है एंड न्यूजीलैंड आई थिंक येट टू प्ले, जो उसकी भी तैयारी हो चुकी है ना, ईरान इज देयर, सो आई थिंक इट्स गुड हम वो भी गेम देख पाएंगे। लेकिन कुछ गेम्स हो चुके हैं, आई थिंक मेक्सिको ड्रॉ था एंड द नेक्स्ट वन वाज आई थिंक कनाडा ना,
1: देयर वाज 1-1 ड्रॉ।
0: जो काफी जो गेम्स भी चल रहे हैं, सो एंड देन ऑल ब्लैक्स का भी गेम आ रहा है अगेंस्ट फ्रांस, और हमेशा कहते धीरू आपने टिकट तो ले लिया होगा क्योंकि जो लोग हमारे तरह जो देर में टिकट ढूंढते नहीं मिलता है, धीरू ऑलरेडी टिकट ले चुका होता तब तक। एनीवेज जो आज हमारा टॉपिक है ऑब्वियसली स्पोर्ट्स नहीं है एंड वी विल गो एंड वी विल टॉक अबाउट ग्रैंड जो कीर्तन संध्या यहाँ पे। और जो लोग हमें ज्यादा करके फेसबुक

देखते हैं तो वी विल बी स्विचिंग ऑन फेसबुक आफ्टर दिस सॉन्ग. तो चलो साहिल हम गीत सुनते हैं, उसके बाद भी हम एक ये जो इंटरव्यू करेंगे अबाउट 15 मिनट का रहेगा, एंड वी विल ट्राई टू कैप्चर एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल इस जो जो ये जो कीर्तन संध्या आ रही है, यानी ये जो सत्संग सनातन सत्संग बॉयज क्रश जो ला रहा है, तो उसके विषय में बात करेंगे. और उसके बाद में हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है, हमने एक इंटरव्यू किया था डोमिनिक, इज अ कैंडिडेट फॉर न्यूजीलैंड लेबर पार्टी, तो हम वो भी आपको सुनाएंगे. इट इज पार्ट ऑफ केवाईसी, यानी कि नो योर कैंडिडेट. और हमारा जो मोटिव है जस्ट for you to let you know about your candidate, just to be aware kyo kya karta hai kya nahi, and his views and opinion. It's not a election campaign to abhi hum nahi kar rahe, it's not that. So we are just letting you know, because hamara jo end goal rahega to encourage you to vote in the coming election. To chalo sahi geet sunte hain.

Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों साथियों, आपको पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सह प्रोग्राम में. मैं हूँ प्रेम डॉक्टर विनेश और ये हमारा 703rd एपिसोड है ऑन प्लेन से मीडिया. और हमारे साथ आज दे रहे साहिल ऑन पेंडलिंग प्लस जो शिवनील जी हमारे वीडियोग्राफी में हेल्प कर रहे हैं. जो लोग हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन हो रहे हैं